0: खनी खनी नयन कोन अनुसरई, खनी खनी बसन धुली तन भरई, खनी खनी दसन छटा छूट हास, खनी खनी अधर अगे करु बास, चौकी चले खनी खनी चलु मंद, मनमथ पाठ पहिला अनुबंध, हृदय मुकुल हिरी हिरी थोर, खनिया चर दाए खनी हुई भोर।
1: শুনছেন রেডিও বাংলানেট.কম বিশ্বের বাঙালির অন্যতম ঠিকানা।

0: खने खने नयन कोन अनुसरई, खने खने वसन धुली तन भरई, खने खने दसन छटा छूट हास, खने खने अधर आगे करु बास, चौकी चले खने खने चलु मंद, मनमथ पाठ पहिला अनुबंध, हृदय मुकुल हिरी हिरी थोर, खने अचर दाए खने हुए भोर।
1: শুনছেন রেডিও বাংলানেট.কম, বিশ্বের বাঙালির অন্যতম ঠিকানা।